ष्टेयाता तवा चौता सोवाने हके वेन ष्टेयाता न एता सोवाने आ याय आ याय आ ए मंग मंग कोतोरित अमम नामे पोषे नोनोवा ओया मंग मंग कोतोरित अमम नामे पोषे नोनोवा ओया शेक्यं